0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।

0: Athington Street, Bradford, BD8 ATY.
1: Telephone 01274731555. Mangla Catering Services .uk. दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
0: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
0: सेफ राइडर .co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जी लिसनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जी, वो कल जैसे 9 नवम्बर है और इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया। मैं समझता हूँ ये एक इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
2: हम सिर से उनका पैगाम लेंगे कल हजरत अल्लामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं समझता हूँ कि जी कल के दिन की अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि कल उस शख्सियत का जो में पैदाइश है जिनके तस्वुर की बुनियाद पर ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल का दिन अहम है और कल हमारी खुद की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझें बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
10: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
9: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
10: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
9: फर्स्ट चॉइस
10: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
9: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
10: 01274317644।
11: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
12: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
12: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
12: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
10: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
12: बालिया 7 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
10: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
12: जेवर वो जो

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306-677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल
9: ब्रैडफोर्ड। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोक

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: have fish and chips, burgers, full English breakfast, fresh cakes and macarons.
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज. बेल सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA. फोन 01274306567. बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर.
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी.
4: ओपन 7 डेज 10 to 6. फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर. लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627.
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव.
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA।
1: पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7

العذاب وإن جهنم لمحيطة

मैं सुनिया है बड़ा औखा बरदखदा सफर यारा।

You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now.
3: 01255555. Hafte ke saaton din aapki khidmat mein pesh. Manningham Superstore.
4: Manningham Superstore.
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306 77.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: Crazy.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

तीरा शबी में सुबह का इम्कान तुझसे है, तीरा शबी में सुबह का इम्कान तुझसे है, दश्ते बाला में जिंदगी आसान तुझसे है। तीरा शबी में सुबह का इम्कान तुझसे है, दश्ते बाला में जिंदगी आसान तुझसे है। बेचेहरगी के मौसम में ना मेहरबान में, बेचेहरगी के मौसम में ना मेहरबान में, ऐ मादरे वतन मेरी पहचान तुझसे है। अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर डिजिटल साउंड में आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारी यही नशात अपने मोबाइल पे स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल मुफ्त सुन सकते हैं, और ज्यादा आपकी मेमोरी स्पेस भी हमारा ऐप नहीं लेता। और सभी अब हमारी समय की ये नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर। और सामिन अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन आदर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मौजूद सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, हमारी ये नशियात सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजलो करम से बखरियत होंगे और एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज कुछ तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती से नवाजे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामिन अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन आ रहे हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, हमारी ये नसीहत सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब बखरियत होंगे। अजी सामिन, आज मौसम खासा गर्म है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप गुजार रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, और कहीं घूमने फिरने भी निकले होंगे। यूं करते हैं कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपको बताए दें स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आप सभी जानते हैं हमारा स्टूडियो का फोन नंबर है, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 3066677, फोन नंबर है 01274 3066677, और हमारा व्हाट्सएप है 00447 800 599 563। That's it, 00447 800 599 563। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत मिल्ले नगमे से, और वतन के हुजूर ये खूबसूरत मिल्ले नगमा जब बचपन में इन्हें हम सुनते थे तो कुछ कैफियत ही कुछ खास होती थी, लेकिन उसके बाद जब ने बलोगत में कदम रखा, दुनिया की ठोकरें खाई, नशे वो फराज से आगे ही मिली, तो पता चला कि जिंदगी क्या है और हमारे वतन में क्या कुछ हो रहा है। तो इस मायूसी के इस आलम में एक बात जो बार बार रह रह के जहन में आती है वो यही, जिस जोश व खरोश से हम 14 अगस्त मनाते रहे हैं हमेशा, उसी से ही मनाएंगे। सिर्फ फर्क यह है कि एक टाइम में हम ये लाइल्मी में मनाते थे, हमें इल्म नहीं होता था कि हमारी जो हकीकी आजादी है वो हमसे कितनी दूर है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि मुल्क हमारा है, ये हमारा घर है। और किसी की खूबसूरत तहरीर एक बार फिर जहन में आ रही है रह रह के, कि जब मुल्क पे चोरों और डाकुओं का राज हो जाए, यानी कि अगर आपके घर में चोर और डाकू आ जाए, कब्जा कर ले, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने घर से प्यार ना करें। घर से प्यार लाजम करना है, हाँ चोरों और डाकुओं को आपने वहां से भगाना है, बस इतनी सी बात है।
آئیے ایک خوبصورت ملی نغمے سے اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور یہ ہے آپ سب کے نام وطن کے حضور.

और अजी हाँ, क्या ही खूबसूरत मिली नगमा, हमारे बचपन की यादों से जुड़ा कि जब ये सुनते हैं तो बचपन याद आ जाता है कि जब स्कूल के दिन थे और बस्ते अपने लेके हम जाते थे और जब 14 अगस्त आता था तो किस तरह हम अपने घरों को और अपने स्कूल को झंडियों से आवेजन करते थे। संभाल रखी हैं दामन की धज्जियां मैंने, संभाल रखी हैं दामन की धज्जियां मैंने, अगस्त आया तो फिर झंडियां बनाऊंगा।

चेहरे पे तहरीर नहीं लिखवाई कोई, चेहरे पे तहरीर नहीं लिखवाई कोई, हमने अपने दिल को पाकिस्तान किया है। और सामिन अभी आप जुनेद जमशेद की आवाज में ये खूबसूरत मिली नगमा सुन रहे थे। रास्ता सहल न था काफलाई आजादी का, रास्ता सहल न था काफलाई आजादी का, आग और खून के दरिया से गुजर कर आया। रास्ता सहल न था काफलाई आजादी का, आग और खून के दरिया से गुजर कर आया। और कितने बाजू थे कटे मेरे अलमदारों के, कितने बाजू थे कटे मेरे अलमदारों के, फिर ये परचम मेरी धरती पे कहीं लहराया।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला में खड़ाइयां गुड़िया
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्बर रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: पैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काकी की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
0: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
1: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
0: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
2: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio.

और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद। कोई गीत सुनना हो, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो या हमारे इन प्रोग्राम्स पे तबसरा करना हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है अपना भी है पराया भी। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है अपना भी है पराया भी। और ये इंतजार सार का था या तुम्हारा था, ये इंतजार सार का था या तुम्हारा था, दिया जलाया भी मैंने दिया बुझाया भी। मैं चाहता हूँ ठहर जाए चश्मे दरिया में, मैं चाहता हूँ ठहर जाए चश्मे दरिया में, लरजता अक्स तुम्हारा भी मेरा साया भी।

और सामिन ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किया। शकील साहब आपने बेहद शुक्रिया आपका। अगला गीत आपके नाम हम पेश कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि गीत आपको पसंद आएगा। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। यकीनन जब लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी, तशरीफ लाइएगा। वो जो आए तो आए दिल को करार, वो जो आए तो आए दिल को करार, वो जो जाए तो रूठ जाए बहार।

कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाएंगे, कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाएंगे, हमने तुम्हें चाहा है हजारों में कहेंगे।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम था मुगले आजम, शायरी थी शकील बदायूनी की, मौसीकी थी नौशाद की, आवाज थी लता की। और सामिन अब अगली ब्रेक से पहले एक और खूबसूरत गीत, और इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगी आप सभी सुनने वालों से लाइव कॉल्स में मुलाकात। तशरीफ लाइएगा, नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 है स्टूडियो का फोन नंबर। तशरीफ लाइएगा, आपसे मुलाकात होती है प्रोग्राम के अगले हिस्से में।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रैडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल।
5: ब्रैडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे मैं फिल्में खुशामदीद। इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर। 1439 के साथ साथ कई नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट और वेब के साथ साथ कई नशात आप डेपे भी सुनते हैं। जी एंड डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड में सुन सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉइड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त और आपकी ज्यादा मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते फोन की। और यही नसीहत इस वक्त आप आपके अपने लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पर भी सुन रहे हैं। अपने सभी सुनने वालों को, वो चाहे हमें ब्रेडफोर्ड इसके गिर्दोनवा या फिर शेफील्ड रादरम में सुन रहे हो, आप सभी को खुश आमदेद कहते हैं। और यही नशियात इस वक्त CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी रिले की जा रही है। आप सभी को खुश आमदेद। और सामीन अब वक्त हुआ जाता है लाइव कॉल्स का, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलें। जी हाँ, इस सैटरडे और संडे को ब्रेडफोर्ड मेला होने जा रहा है, लीट रोड फेस्टिवल। गुज़श्ता साल भी धूम मचाई थी इसने, जिसमें अताउल्लाह ने परफॉर्म किया था। और इस साल सैटरडे को नईम हजारवी और संडे को इब्राहिम हक होंगे किंग ऑफ भंगड़ा। जरूर तशरीफ लाइएगा, एक खूबसूरत डे आउट होगा फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। जरूर तशरीफ लाइएगा। यकीनन ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, जो कि इस साल का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी है ब्रेडफोर्ड लीड रोड फेस्टिवल का, इंशाल्लाह आपसे स्टेज पे भी मुलाकात होगी और मिलजुल के इस मेले को हम एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल आना मत भूलिएगा इस सैटरडे 15 और 16 अगस्त को, सैटरडे और संडे। और सामीन अब लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने आज के पहले कॉलर को खुश आमदेद कहते हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम।
0: जी शकील साहब, खुश आमदेद कहते हैं, आप खैरियत से?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है आपके दुआएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप सुनाए कैसे?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है।
1: तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरे मेहमान सलीम साहब, अली भाई हैं, चौधरी जुक्सार साहब है, नवीद भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब है, महबूब इलाही, तारिक हुसैन है, और भी जितने सुनने वाले हैं, सदिया बहन सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: तो एक गजल लाया हूँ, ये फना बुलंद पेशारी इनका नाम है।
0: जी जी, बड़ा मोतबर नाम, और हमारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इनका खासा कलाम जो है वो कवाली के रूप में भी पेश किया है।
1: फना बुलंद पेशारी।
0: जी जी।
1: वो कहते हैं, उनके जलवों पे हमा वक्त नजर होती है।
0: उनके जलवों पे हमा वक्त नजर होती है। वाह वाह, अच्छा मिसरा।
1: कुछ है यार में यूं अपनी बसर होती
0: है। हाँ हाँ हाँ, कुछ है यार में यूं अपनी बसर होती है। क्या कहने, क्या कहने।
1: जाने क्या चीज मोहब्बत की नजर होती है।
0: हाँ हाँ हाँ, जाने क्या चीज मोहब्बत की नजर होती है।
1: वो जिधर होते हैं दुनिया उधर होती है।
0: हाँ हाँ, खूब है। देखो देखो तो चश्मे यार की जादू बयानियाँ, देखो तो चश्मे यार की जादू बयानियाँ, हर एक को ये गुमा है मुखातब हम ही रहे।
1: होश वाले मेरी वहशत को भला क्या समझे।
0: होश वाले मेरी वहशत को भला क्या समझे।
1: उनके दीवानों को आलम की खबर होती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। इश्क में चांद तारों की हकीकत क्या है।
0: इश्क में चांद तारों की हकीकत क्या है।
1: जलवाए यार पे कुर्बान सहर होती है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: इश्क में चांद तारों की हकीकत क्या क्या है। जलवाए यार पे कुर्बान सहर होती है।
0: बहुत खूब।
1: आपकी याद से होता है मेरा दिल रोशन।
0: आपकी याद से होता है मेरा दिल रोशन।
1: आपको देख के बेदार नजर होती।
0: क्या
1: है।
0: कहने, क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: आपकी याद से होता होता है मेरा दिल रोशन। आपको देख के नजर होती है।
0: कहते ना कि शमाए गम ना बुझाओ के शकेब इसके बगैर, शमाए गम ना बुझाओ के शकेब इसके बगैर, रास्ता घर का भुला देती हैं अक्सर यादें।
1: मेरी उनको ना खबर हो ये कोई बात नहीं।
0: हाँ हाँ, मेरी उनको ना खबर हो ये कोई बात नहीं।
1: उनको तो सारे जमाने की खबर होती है।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये शेर। वाह वाह।
1: मेरी उनको न खबर हो ये कोई बात नहीं।
0: आहा।
1: उनको तो सारे जमाने की खबर होती है।
0: आहा। क्या कहने, जबरदस्त।
1: जज्बा इश्क में जन्नत की तमन्ना कैसी।
0: जज्बा इश्क में जन्नत की तमन्ना कैसी।
1: ये बुलंदी तो मेरी गर्द सफर होती है।
0: वाह वाह, ये बुलंदी तो मेरी गर्द सफर होती है। वाह वाह।
1: मेरे दामन में समा जाते हैं दोनों आलम।
0: मेरे दामन में समा जाते हैं दोनों आलम।
1: मेरे जाना की नजर जब भी इधर होती है।
0: क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह,
1: शुक्रिया। आप ये कहते हैं, और क्या होगी मेरे इश्क की महराज फना।
0: और क्या होगी मेरे इश्क की महराज फना।
1: जिंदगी यार के कदमों में बसर,
0: बसर होती है। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया। तो एक वतन के लिए।
0: जी जी, वतन के हुजूर, जरूर जरूर।
1: फारूक लिखने वाले हैं, बशीर फारूक बशीर इनका नाम है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: कहते हैं, सैले खजां गुजर गया तज़करा-ए बहार कर, हिजर की रुत ढल गई सुबह का इंतजार कर।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। तेरी वतन से आबरू मेरी वतन से आबरू।
0: वाह वाह।
1: उसने वतन के गीत गा सब्जा और गुल
0: से प्यार कर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: सुरमाए चश्मे दिल बना खाके नजर नवाज को, हुरमते अर्ज़े पाक कलबो जिगर निसार कर। वाह
0: वाह।
1: मेरे रियाज़े ज़ीस्त में सरो चमन नहीं अगर, मेरे लिए खिजा को ही दहर में साजगार कर।
0: साजगार कर, बहुत खूब।
1: जिसको खिजा का डर न हो, जिसको न खौफ बरक हो, जिसको खिजा का डरना हो जिसको न खौफे बर्क हो, मेरे वतन को है खुदा ऐसी अता बहार कर।
0: आहा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो।
1: आखिरी शेर है, किश्वर दिल नवाज को अजमत लाजवाल दे।
0: वाह,
1: किश्वर दिल नवाज को अजमत लाजवाल दे, परचमे अर्ज पाक को दहर में बावकार कर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने, बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सी तालियां, सलामत रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।

और सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे जनाब शकील साहब, बरले से तशरीफ लाते हैं और खूबसूरत शायरी का तोहफा इंतखाब आप के लिए लाते हैं, हमेशा हस्बे हाल शायरी शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया इनका। और बताइएगा इस वक्त आप हमें कहाँ पे सुन रहे हैं और अगर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो नंबर मिला सकते हैं आप भी 01274306677 के जरिए। ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। और जैसा कि सामीन आपको बता रहे थे कि लीड्स रोड फेस्टिवल 15 और 16 यानी कि सैटरडे और संडे को होने जा रहा है, चंद रोज की अब दूरी रह गई है, जिसमें पाकिस्तान के माया नाज किंग ऑफ भंगड़ा इब्रारुल हक तशरीफ ला रहे हैं, ये फन का मुजाहरा करेंगे। और सैटरडे को नईम हजारवी, चलो कोई गल नहीं वो भी आ रहे हैं, तो जरूर आइएगा आप भी ताकि मिलजुल के हम इस प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हों। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडिया पार्टनर है इस साल के ब्रेडफोर्ड मेले का। अगर आपको इससे मुतालिक इसकी बाबत कुछ भी मालूमात चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मजीद मालूमात के लिए हम आपको इसकी मजीद मालूमात भी देंगे। स्टूडियो का नंबर है 01274306677।

हमारे सामिन अब यूं करते हैं कि आपको इसी शो में जो दूसरे हमारे परफॉर्मर हैं नईम हजारवी, उनका एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम है मेरा यार पिंडीदा।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
4: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
3: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
4: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
3: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
4: लीज रोड फेस्टिवल
3: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
4: आप भी
3: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
4: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
3: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644
5: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
4: दुल्हन वो जो पिया मन था
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काकी की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
4: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duffield Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
7: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद और आपके साथ साथ अब खुश आमदेद कहते हैं हीर को जो इस वक्त फ्रांस से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अस्सलाम वालेकुम हीर
5: वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके
4: जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है बड़ा करम है

0: आप सुनिए, आप खैरियत से? आज आपके शहर का, आपके फ्रांस का मौसम कैसा था?
1: उलाला, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी।
0: आज यहाँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था, खासी गर्मी थी। स्पेशली जब आप ड्राइव करते हैं तो खासी कार के अंदर जैसे एक तपश और हीट महसूस हो रही थी, हीट वेव।
1: जी ऐसा ही है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा ना। चले अल्लाह ताला आसानियां करे हम सबके लिए।
0: और आज शायद सूरज ग्रहण का भी कुछ सुना था, पता नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं क्या सूरज ग्रहण है। तकरीबन 4 बजे मैं बाहर निकली किसी काम से, तो पता चला कि तो आज तो ग्रहण है, तो बस
0: चांद की मर्जी। उससे मुझे एक शेर याद आ गया कि उसने रुख पे जुल्फों को इस तरह बखेरा है, उसने रुख पे जुल्फों को इस तरह बखेरा है, एक तरफ उजाला है एक तरफ अंधेरा है। जब ग्रहण लगता है तो यू ही होता है ना, ग्रहण जब लगता है तो एक तरफ अंधेरा हो जाता है एक तरफ उजाला। जी जी
1: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए।
0: जी जी आमीन आमीन। तो आज क्या सुनाएंगे आप?
1: हाँ जी मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि कुछ जख्म दिल के ऐसे हैं जो भर नहीं सकते।
0: वाह वाह।
1: कुछ जख्म दिल के ऐसे हैं जो भर नहीं सकते, ये वो हरीफ हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते।
0: आहा, क्या कहने, वाह वाह।
1: बाहर थी बारिश और दिल में थी एक खामोशी। बाहर थी बारिश और दिल में थी एक खामोशी, हम अपने अश्क कागज पर घर नहीं सकते।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: चरागे सब किलो में तेरी याद चलती है, चरागे सब किलो में तेरी याद चलती है, वो लम्हे हैं जो हम चाह कर भी भूल नहीं सकते।
0: भुला नहीं सकते। वाह वाह वाह।
1: ये खुश्क फूल जो किताबों में छुपाए हैं, ये खुश्क फूल जो किताबों में छुपाए हैं, सच है कि वो माजी को फिर जिंदा कर नहीं सकते।
0: बहुत खूब।
1: हमने संभाल कर रखी है दास्तां अपनी, हमने संभाल कर रखी है दास्तां अपनी, वो दाग हैं जो चेहरे पर दिखाई दे नहीं सकते।
0: बहुत
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे?
0: जी जी, मुझे एक कथा ज़हन में आ रहा था कि सार हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं, सार हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं, कि जिनको आना था अब तक वो लोग आए नहीं, वो चांद चेहरे जो अब तक बसे हैं आंखों में, वो चंद लोग जो हमने अभी बुलाए नहीं।
1: क्या कहने हैं, इसका मैं कहूंगी कि पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था।
0: बहुत खूब।
1: पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में
0: उजालों
1: की तरह था।
0: इससे पढ़िएगा, क्या कहने।
1: पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में
0: उजालों
1: की तरह था।
0: बहुत खूब।
1: ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो इल्मे रियाजी के
0: सवालों की तरह था। फिर से पढ़िएगा, बहुत प्यारा शेर है ये। वाह वाह। जी जी।
1: ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो इल्मे रियाजी के सवालों की तरह था।
0: और रियाजी के सवालों से एक शेर याद आया कि काश मैं तुझ पे रियाजी के सवालों की तरह, काश मैं तुझ पे रियाजी के सवालों की तरह खुद को तकसीम करूं, कुछ भी ना हासिल आए।
1: आए हाय, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं कि उलझा हुआ ऐसे कि कभी हल ना हो सका, उलझा हुआ ऐसा कि कभी हल ना हो सका, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: वो मिल तो गया था मगर अपना ही मकदर शतरंज की उलझी हुई
0: चालों
1: की तरह था।
0: क्या कहने।
1: वो रुख में खुशबू की तरह हो गया तहलील, वो रुख में खुशबू की तरह हो गया तहलील, जो

0: दूर बहुत चांद के हालों की तरह था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। टाइम है तो मैं और सुना दूंगी,
1: अगर क्यों नहीं है तो। ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, ये तेरी याद है या दिन निकलने वाला है।
0: अरे वाह,
1: आप सुनाइए।
0: बहुत आंखों में सुनाऊंगी, कहते हैं कि गुलाब आंखें शराब आंखें।
1: वाह वाह,
0: गुलाब आंखें शराब आंखें यही तो है लाजवाब आंखें।
1: क्या कहने क्या कहने,
0: उन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाल बांके आजाद बांके।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: कभी नजर में बला की शोखी, कभी नजर में बला की शोखी, कभी सिरापा हिजाब बांके।
1: कहते ना कि मैं तेरी आंखों में डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी आंखों में डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन इनमें कहते हैं समंदर किसी गहराई है।
0: हाय हाय, क्या कह रहे, बहुत खूबी। कहते हैं कि कभी छुपाती है राज दिल के,
1: कभी छुपाते हैं राज दिल के,
0: छुपाती है राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी है तो झील जैसी, किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई चिराग आंखें।
1: कहते ना कि दिल के आईने पर ना लिखो राज की बातें कभी, दिल के आईने पर ना लिखो राज की बातें कभी, आंख की खिड़की खुली है राज बाहर जाएगा।
0: क्या कह रहे, बोलो बोलो। वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले हजूर आंखें जनाब आंखें।
1: क्या कहने क्या कहने, आंखों से खूबसूरत लगल है।
0: अजब था गुफ्तगू का आलम, अजब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई जवाब आंखें।
1: क्या कहने, लाजवाब लाजवाब।
0: हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, खुदा के बंदे, अरे ओ खुदा के बंदे, संभाल आंखें।
1: क्या कहने क्या कहने। कहते ना कि मजमे से आशिकों के वो घबराए इस कदर, मजमे से आशिकों के वो घबराए इस कदर, कुरान उठा रहे थे कि बंदा हसी नहीं।
0: हाय हाय, क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत मजा आया जी आज शायरी करके। और सना को हम मिस करें, आएंगे तो उनको मेरा बहुत सलाम, बहुत दुआएं उनके लिए।
1: जरूर जरूर। चलिए आंखों के हवाले से मैं भी आपको एक गीत सुनाता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: आपके नाम है ये खूबसूरत गीत। ओके जी, आपके लिए सबसे पहले बहुत सी तालियां। सलामत रहे, सलामत रहे।

0: और सामिन, यूं तो हमने गीत क्यों कर लिया था, लेकिन अब टेलीफोन लाइन पे हमारे इन्हीं तालियों की गूंज में अगले मेहमान आ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: जी जी, आपको।
0: हेलो
1: जी,
0: जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब हमें बिल्कुल सही आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। खुश आमदीद।
1: मैं नवीद।
0: जी जी, नवीद साहब, खुश आमदीद आज के इस प्रोग्राम में।
1: बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। कैसे हैं सर जी?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, मजाज बखैर हैं? ठीक है आप?
1: अल्लाह का शुक्र।
0: जी जी,
1: वो मुझे ना कुछ कतात याद आ रहे थे।
0: जी जी,
1: वो अब मैं ढूंढूं या पहले आपकी नजर कुछ और कलाम?
0: मैं तो हमेशा यही सुनने वालों से इल्तमास करता रहता हूँ कि मुसलसल गजल के बजाय जो चीदा चीदा अशआर होते हैं वो ज्यादा लुत्फ देते हैं इस प्रोग्राम में। आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, वो तो है, लेकिन वो बात ऐसे कि मुझे राहत इंदौरवी साहब की कुछ चीज।
0: हाँ जी जी, जरूर, वो तो लाजवाब शायर थे, क्या कहना उनका। जी जी, जो भी आप तो पेश करना चाहें, बिस्मिल्लाह माइक लिए।
1: उसने बालों में सजा रखे थे कागज गुलाब, मैं ये समझा कि बहारों के जमाने आए।
0: फिर से पढ़िएगा।
1: उसने बालों में सजा रखे थे कागज के गुलाब, मैं ये समझा कि बहारों के जमाने आए।
0: और इस दर्जा मुतमईन है वो जुल्फे सवार के, इस दर्जा मुतमईन है वो जुल्फे सवार के, जैसे सदा रहेंगे जमाने बहार के।
1: हाय हाय हाय हाय, वो क्या था कि जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारे?
0: आहा, क्या कहने
1: आप जुल्फे जाने के हम सवारिए साहेब।
0: आहा,
1: जिंदगी की जुल्फों को
0: आप क्या
1: संवारेंगे? और कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले।
0: आहा,
1: जिल्ले सुभानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए।
0: बहुत
1: हाय हाय, ये भी उन्हीं का शेर है। और कहते हैं कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था।
0: बहुत खूब, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह,
1: कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों
0: पे।
1: राहत इंदौरवी साहब कह रहे हैं, ये
0: लाजवाब है, लाजवाब।
1: आपने कहा था ना कि एक एक शेर पढ़ा करें, तो आज मैंने उनके चार चुनिंदा आपकी नजर करना चाह रहा
0: हूँ। सही है
1: जी, आप महसूस हो रहे हैं?
0: बहुत अच्छे, क्यों नहीं।
1: तो फिर लिखते हैं कि पता नहीं मेरी जागीरें कहाँ हुई, लेकिन पता नहीं मेरी जागीरें क्या हुई, लेकिन यहाँ मैं दफन हूँ इतनी जमीन मेरी।
0: बहुत खूब। कहते ना कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमीन भी चाहिए दो गज कफन के बाद।
1: आए, कितना है बदनसीब जफर के लिए
0: दो गज
1: जगह भी ना मिली कुए यार में। आए आए आए, देखे ना शेर से शेर कैसे निकलना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और क्या अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, ये आपकी नजर खास और सुनिए। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो।
0: बहुत खूब।
1: अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आए, आए।
0: बहुत।
1: और अगर खिलाफ है होने दो जहां थोड़ी है।
0: क्या कहने, लाजवाब गजल है। वाह वाह,
1: अगर खिलाफ है होने दो वो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है।
0: क्या कहने, खूबसूरत गजल।
1: मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा था गजल नहीं शेर।
0: जी जी,
1: तो उसकी याद आई है सांसों जरा चलो।
0: आहा,
1: अरे उसकी याद आई है
0: सांसों जरा आहिस्ता चलो,
1: धड़कनों से भी इबादत में खलल
0: पड़ता है। बहुत खूब।
1: ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हमारे पांव का कांटा
0: हम ही से निकलेगा।
1: और दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं।
0: वाह वाह।
1: दिलों में आग,
0: लबों पर
1: गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरा निकाब रखते हैं।
0: उन फूल जैसे चेहरों पे जुमले करख थे, दरिया के आसपास भी सूखे दरख्त थे।
1: वाह वाह।
0: और चेहरे चेहरे सजे सजे हैं तो दिल है बुझे बुझे, हर शख्स में तादाद है दिन रात की तरह।
1: अरे वाह वाह वाह, क्या बात। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम,
0: शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम।
1: आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे,
0: क्या कहने क्या कहने, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे,
1: औकात में रहे।
0: वाह वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा।
1: शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं
0: हैं हम,
1: आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे।
0: हाँ हाँ, होता नहीं किसी का कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर।
1: आए आए आए आए, वाह वाह वाह। और आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो।
0: वाह वाह।
1: आंख में पानी रखो,
0: वाह वाह,
1: होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें भी बहुत सारी रखो।
0: वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है।
1: शाह जी, अब शेर सुनिए
0: जी जी,
1: और आपका प्रोजेक्ट जाइए कि
0: जी जी,
1: मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर।
0: मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर।
1: मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा।
0: कर दूंगा, बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। और हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे।
0: वाह वाह।
1: हमसे पहले भी
0: मुसाफिर कई
1: गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते
0: जाते। क्या कहने, हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, तुम्हारे बाद भी कोई यहाँ से गुजरेगा
1: गुजरेगा। और क्या था वो शेर, मुझे याद आ रहा है कि उसकी वो जाने,
0: उसे पासे वफा था कि नहीं
1: नहीं। आए हाय,
0: तुम फराज अपने तो हिस्से की निभाते जाते। क्या वाँ, फराज वाँ, क्या कहने
1: वाला जी, आपको ये है आपको सुनाने का मजा।
0: अच्छा,
1: सात मंजिल थी मगर खौफ व खतर ऐसा था।
0: सात मंजिल थी मगर खौफ व खतर ऐसा था,
1: उम्र भर चलते रहे लोग सफर ऐसा था।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल, अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल, जिंदगी तू ही बता कितना सफर बाकी है।
1: हाय हाय हाय, मैं ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे।
0: मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे।
1: दीवार मेरे भाई, मेरे हिस्से की जिम्मा जमीन तू रख
0: ले। जमीन तू रख ले, क्या कहने।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: वाह वाह वाह।
1: मेरी ख्वाहिश है, और ये मेरे दिल के करीब शेर है सर, मैं दोबारा कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले।
0: किसी मजदूर को रोजी तो मयसर होगी, किसी मजदूर को रोजी तो मयसर होगी, मेरे घर की कोई दीवार गिरा दी जाए।
1: आए हाय हाय हाय, क्या बात है शाह जी। और सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए।
0: सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए।
1: ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए।
0: हाय हाय, मैखाने की तोहीन है, रिंदों की हतक है। मैखाने की तोहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए।
1: हाय हाय। और आगे सुनिए कि मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता। मैं आखिर
0: कौन सा मौसम
1: तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी।
0: बहुत खूब, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे।
1: वाह वाह वाह। और रिश्तों की धूप छाओ से आजाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद
0: हो गए। बहुत खूब बहुत खूब।
1: और अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है।
0: वाह,
1: उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते।
0: हाँ हाँ, जाने किस किस पे पड़ी होंगी तुम्हारी नजरें, जाने किस किस पे पड़ी होंगी तुम्हारी नजरें, हमने चुन चुन के तेरे शहर के पत्थर चूमे।
1: हाय हाय, क्या था एक गजल में जागरी अनोक डरन गई थी कि तुझसे मिलने की सजा देंगे तेरे शहर के लोग।
0: वाह वाह,
1: मुझको दीवाना बना देंगे तेरे
0: शहर के लोग। वाह वाह,
1: और मैंने अपनी खुश आंखों से लहू छलका दिया।
0: वाह वाह,
1: मैंने अपनी
0: खुश आंखों से लहू छलका दिया।
1: एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए।
0: वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए गई।
1: मैंने अपनी खुश आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए।
0: और तश्नगी कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, तश्नगी कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला।
1: वाह वाह वाह वाह, मगर
0: तश्नगी कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, तश्नगी कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और तश्नगी मौज के होंठों पे मचलती देखी, तश्नगी मौज के होंठों पे मचलती देखी, हम जो साहिल पे कभी प्यास बुझाने निकले।
1: वाह वाह, रोज पत्थर की हमायत में गजल लिखते हैं। रोज पत्थर की हमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता
0: है। अच्छी नहीं नजाकत एहसास इस कदर, अच्छी नहीं नजाकत एहसास इस कदर, शीशा अगर बनोगे तो पत्थर भी आएगा।
1: हाय हाय,
0: और एक शेर है ना कि इसी हवाले से, पत्थर के हवाले से, कि हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: और जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े।
1: मुझे वो याद आ गया, शाहजी कमाल करते हैं, वो कहता कि हमने जिनको पत्थर से बनाया सनम, वो ख्याल था कि ये पथराव रोक दें चलकर, जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे।
0: वाह वाह,
1: और हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं।
0: वाह वाह,
1: हम अपनी जान के दुश्मन को
0: अपनी जान कहते हैं,
1: अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
0: क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: और हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते,
0: कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले,
1: पत्थर ही ले चले।
0: और ये क्या कि छेड़ती है मैं दिल गिरफ्तगी, घबरा रहे हैं आप तो बाहरी ही ले चले, और यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पे ख्याले यार की चादर ही ले चले,
1: चादर ही ले चले। और ये क्या था कि ओए ओए, आपने मुझे वो याद दिला दिया कि
0: जी जी, और हमारे पास सिर्फ एक मिनट है, उसके बाद इजाजत चाहेंगे हम,
1: तो फिर इसको अब आइंदा के लिए उठा सकते हैं।
0: और साकिया रंज न कर, साकिया रंज न कर, जाग उठेगी महफिल, और कुछ देर उठा रखते हैं पीना अपना, अगली निशेस तक आपसे याद।
1: मेरे पास तो इतने तवील आपने कहा था ना अशार, तो मेरे पास तकरीबन 100 अशार और हैं, लेकिन वो जाहिर है वक्त
0: जी जी
1: दामन में गुंजाइश नहीं है।
0: और खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे,
1: रुसवा किया मुझे। और क्या था कि वो क्या कहते हैं कि मैं तो हमेशा वो शेर कहता हूँ कि हमने माना कि तगाफुल न
0: करोगे लेकिन खाक
1: खाक हो जाएंगे हम, तुमको
0: खबर होने
1: तक। तू सुन रहा है, सुन ले, काश उसके दिल तक ये आवाज।
0: और जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं।
1: बात सुनिए, वो कहता कि मेरी दास्तान हसरत
0: वो सुना के मुझे आजमाने वाले,
1: मुझे आजमा।
0: बहुत शुक्रिया, बिल्कुल घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही, इंशाल्लाह अगली शिश तक। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और अजीन सामीन अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर स्वीडन से नवीद राणा साहब तशरीफ फरमाते, और उम्मीद करते हैं कि आज की ये नशिस्त, आज की ये महफिल आप सुनने वालों को पसंद आई होगी। बेहद शुक्रिया आप सभी का करते हैं अदा, जो आज के इस प्रोग्राम को आपने सुना, पसंद किया, कॉल्स की। एक बार फिर जाते जाते आपको बताते चलें कि ब्रेडफोर्ड मेला 15 और 16 जी इस सैटरडे और संडे को होने जा रहा है। सैटरडे को नईम हजारवी होंगे और संडे को इब्राहिम हक अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। जरूर आइएगा, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडिया पार्टनर है इस साल के लीड रोड फेस्टिवल का, ब्रेडफोर्ड मेले का। मोर पार्क किलिंगहाल रोड ब्रेडफोर्ड में आइएगा, आप सभी से होगी मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अब तो जाते हैं बुध का देश मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: अब सबके लिए नेक तमन्नों के साथ दुआओं के साथ मोहम्मद महमूद हाजरी खिदमत है खूबसूरत शायरी लेकर फूल से प्यारे चांद सितारे साथियों अदाबस करता हूं यही जगह जहां

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स।

मुझे याद है वो पहली मुलाकात तेरी हाँ मुझे याद है वो पहली मुलाकात तेरी वो झिझकती सी अधूरी सी हर एक बात तेरी मेरे जबराहे मोहब्बत

ख्वाबों से हर एक रात सजाई मैंने, हाँ मुझे याद है वो पहली मुलाकात तेरी, वो झिझकती सी अधूरी सी हर एक बात तेरी। मुझे याद है वो पहली मुलाकात तेरी, वो झिझकती सी

पसंद किया होगा। तमाम उम्र चले और घर नहीं आया, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया, हमारे साथ कोई

हर एक सांस जिसे दोस्त ये तलाश किया, हर एक सांस जिसे दोस्त ने तलाश किया।

0: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
1: वाजी सुनने वालों की खिदमत में हिसाम मुकद्दम का आदाब अर्ज है। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन आपकी खिदमत में गुलदस्ता प्रोग्राम लिए हाजिर है और एशियन रेडियो लाइव भी आपका साथ निभा रहा है जो दुनिया भर में सुना जा रहा है। बचपन जो न होता तो जवानी भी न होती, बचपन जो न होता तो जवानी भी न होती।

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Himesh, फिर समय के बाद अब पेश है आशा और लता की आवाज में फिल्म दो फूल से नगमा संगीत बख्शा है वसंत देसाई ने बचपन का मोरा तोरा प्यार सुहाना देखो जी याद रखना निभाना

अच्छे भोले वाले लोग बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद हमारे पिता का वक्त आया, जबकि एजुकेशन और एक लफ्ज है रवायत, रवायत के माने है ट्रेडिशंस, कि हमारी ट्रेडिशंस में कितने सारे बदलाव आए। काबिल गौर ये बंद है, मजबूत लिखा है शायद ने।

0: तो फुल फिल्म का है।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स
3: होता है बचपन हर गम।
4: दिस इज एशियन रेडियो लाइव गुलदस्ता विद हिसाम मुकद्दम।
5: फिल्म गीत गाता चल से किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने खूबसूरत गीत सुना जिसे लिखा था रविंद्र जैन ने। अब एक और मनमोहक नामा फिल्म है बेजू बावरा। शकील का कलाम, नौशाद का संगीत, लता जी की मनमोहक आवाज बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना।

जनाब, हरी हरन की गाय हुई इस गजल के बाद अब पेश खदमत है स्वर्गीय मुकेश की आवाज में फिल्म देवर से एक गीत जिसे आनंद बख्श ने लिखा है और रोशन ने इसका संगीत तरतीब दिया है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।

0: जाने इस लड़की की आवाज सुनकर इसको क्या हो जाता है।
1: कल तुम बाग में खेलने नहीं आए?
2: मेरी माँ नाराज हो चुकी है, कहती है भिखारी और अमीर का क्या साथ।
1: कहती तो मेरी आया भी यही है, मगर इससे क्या, घोड़े पे बैठोगे?
2: गिरा तो नहीं दोगी?
1: नहीं, गिरने लगोगे तो कमाल दोगे। इन्हें भी मेरे साथ बिठा दो।
0: आज फिर भाग गया। अब तुम ही बताओ मैं इसे कैसे समझ।

थोड़ा सा पानी देना। हेलो, चंपा तुम कहाँ हो?

सलाहुद्दीन परवेज का कलाम पंकज उदास खयाम की धुन में। मोहब्बतों का सफर फिल्म से आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। अब पेश खिदमत है जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को जरूरत थी आवाज की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। शकील बदायूं का कलाम रवि की खूबसूरत तर्ज पे रचा। फिल्म नर्तकी से मोहम्मद रफी आपकी खिदमत में

खूबसूरत तर्ज और रफी साहब की आवाज, शकील का कलाम, फिल्म नर्तकी। अब पेश खिदमत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से ये गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आर डी बर्मन ने संगीत बख्शा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। किशोर कुमार।

फिल्म आपकी कसम से लिया गया है नगमा। किशोर कुमार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और ये प्रोग्राम आपकी दिलजोई के लिए हिस्सा मुकदम एशियन रेडियो लाइव से गुलदस्ते के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए hisam@asianradiolive.com। अब हाजिर खिदमत है सचिन गुप्ता का लिखा हुआ और संगीत इन्हीं का है, आवाज है उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स जहाँ

0: with Guzzles Koalis. Classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. and also Saturday at 7 p.m.
1: और यही किशोर कुमार जो साहिल लुधियानवी का कलाम पेश कर रहे हैं एस डी बर्मन की धुन पे फिल्म का नाम है मुनीम जी जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को

तेरे करम की चाह में आया तेरे हुजूर, तेरे सिवा है कौन जो समझे जुबान-ए-इश्क। इंदा फाजली साहब के फलसफाना सूफियाना शब्द अनूप जलोटा और सुरेश वाट का फिल्म परबत के उस पार से आपकी खदमत में पेश कर रहे थे। खयाम साहब को फिल्म उमरा उचा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में शेर यार के कलाम को फिल्म उमरा उजा से।

0: Guzzles Qualis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 PM.
1: दोस्तों जिंदगी भर खयाम साहब को शेर व शायरी से और शायरों से दिलचस्पी रही, रफाकत रही, दोस्ती रही, जिसमें साहिर लुधियानी का नाम सरे फहरिस्त है। उनका लिखा हुआ है गीत फिर सुबह हो गई से मुकेश आपकी खिदमत पेश कर रही। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्ता हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। सॉरी मुकेश।

फिर सुबह होगी कि इस नगमे के बाद अब पेश खिदमत है रफी की आवाज में फिल्म शगुन से नगमा जिसे साहर साहब ने लिखा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, जिसे रफी और सुमन कल्याणपुर गा रहे हैं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 124 लेन ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफवे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ

जगजीत कौर फिल्म शगुन से नगमा पेश कर रही थी। अब बारी है 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली फिल्म कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है साहिर लुधियाने का ये मकबूल कलाम जिसे मुकेश लता जी गा रही हैं।

0: are listening to Guldasta on Asian Radio Live.
1: फिल्म कभी कभी के इस मशहूर गीत के बाद अब एक और नायाब तोहफा निदा फाजली का कलाम है, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता कभी किसी को मुकम्मल, जहां नहीं में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो,

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर,

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: Listen to myself, Rez Khan, on Bradford Asian Radio on Medium Wave 1413 and online Bradford.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा।

0: इनको भी है हा,
1: हा।
0: मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन सच बन गया अगर उलझन फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे जिम सही हा, हा। इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
4: मेनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा आवाज,
1: हर वक्त के साथ।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.